ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

चंद्रशेखरा सत्य साई शंकरा शंकरा सदाशिवा चंद्रशेखरा नीलकंठ शूलधारी।